कबाड़ी बना हूँ। सीढ़ी सीढ़ी की वो वोनी रोई रोई की इजा आड़िया बिकमी था ही इदा सीढ़ी सीढ़ी की इथोनी नी दिवगा की इदा सीढ़ी सीढ़ी की हा नजा खानी नी दिवगा की जाबुनी हा नजा उखानी।